0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: हर घर तिरंगा, आसमान को पाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और

0: लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for भारत।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
1: जय। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खडसे वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. The ministry added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contributions across sectors. Solar energy remains the key growth engine. Jharkhand police has imposed prohibitory orders around the assembly premises and made elaborate security arrangements across Ranchi. The measures have been taken in view of today's Vidhan Sabha march called by students who have been protesting for more than 2 weeks against alleged irregularities in recruitment exams in the state. A prohibitory order has also been promulgated within a 750-meter radius of the Vidhan Sabha building from 6 to 12 of this month. Protesters allege that hundreds of students coming to the state capital from different parts of Jharkhand are being stopped by the police forcefully. The students' protest entered its 17th day today, while six of them are on hunger strike, protesting against alleged irregularities in recruitment exams. BJP leader Amar Bori alleged that the party's state unit president Aditya Sahu has been put under house arrest. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity and India's rich cultural heritage. The campaign encourages citizens to hoist the national flag and take part in activities that celebrate the spirit of patriotism and unity. This year's campaign is special as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate actively in the campaign and renew their commitment to building a Viksit Bharat. India has dispatched 8 metric ton consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public healthcare capacity. The External Affairs Ministry said in a social media post that India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress. The India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh today. The Weather Department has also forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Assam, Meghalaya, East Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh during the next 2 days. In squash, India settled for the silver medal in the team event at the FISU World University Championships in Mumbai yesterday. The Indian quartet of Om Sainwal, Shamina Riaz, Suraj Kumar Chand and Nirupama Dubey lost the final to Hong Kong, China on game difference after the tie ended 2-2. Despite missing out on gold, a silver medal is India's best ever finish in the team event at the championship. And that is the end of this news bulletin.
3: মিডিয়ামৱৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্জ, DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি।

जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ সভাপতিত্বত কালি যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগ, খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ তথা সমবায় বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। যোৰহাট পৌৰ এলেকাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, নগৰীয় আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ গতি আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ স্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰা হয়। মন্ত্ৰী শ্ৰীৰায়ে জিলাখনৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণে যাতে অন্ন সেৱা দিন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে সমবায় সমিতিৰ গুদামসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ মজুত আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থাৰো বুজ লয়। দেশজুৰি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৰাজ্যৰ শিশুসকলক সমীপৰ বিদ্যালয় তথা অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈ পেলু নিৰ্মূলকৰণৰ বিনামূলীয়া দৰৱ সেৱন কৰাবলৈ অভিভাৱকসকলক আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে পেলু নিৰ্মূলকৰণৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ ৰক্তাল্পতা ৰোগ হ্ৰাস হোৱাৰ লগতে মানসিক প্ৰগতি সাধন হয়। তদুপৰি ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলে অধিক পৰিপুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বিকাশো সুচল হয়। জলজীৱন মিছনৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় জিলাত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন আঁচনি তথা কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কালি এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত মন্ত্ৰী কৃষ্টেন্দু পালে অংশগ্ৰহণ কৰে।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय

0: समझ फैलाने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোড়া। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे

0: के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students'

सैनिक भाइयों, गीत संगीत के इस सफर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जयश्री। सबसे पहले तो आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज के कार्यक्रम सूची की। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गीतमाला 1:10 पर। कार्यक्रम वतन के तराने का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका 2:30 पर। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी जानकारी आज के प्रसारण सूची की।

सनी भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाजों में आजाद फिल्म से। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं चैंपियन फिल्म से अलका याग्निक और रूप कुमार राठौर की आवाजों में गीत, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना भूतनाथ रिटर्न फिल्म से अमान तिरखा की आवाज में गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अभिजीत की आवाज में चलते चलते फिल्म से। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव ने।

रेडियो वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार फिल्म से गीत। बोल लिखे हैं इशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है एआर रहमान ने।

सैनिक भाई उसी के साथ होता है अंत दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाई मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार फिल्म से गीत।

कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कल की कार्यक्रम सूची के बारे में। कल मंगलवार है और हर रोज की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे 12:12 पर। बारह बजकर 30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत 1:10 पर।

कार्यक्रम पनघट का वक्त होगा 1:40 दिन के 2 बजे मिड न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन 2:30 पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का पहला तराना हमने लिया है सनू निगम की आवाज में चंदा की डोली एल्बम से।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अभी आपने सुना अक्सर एल्बम से शान की आवाज में गीत। अब आइए सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज में गीत, आपका अभिजीत सावंत एल्बम से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि आप हमारे प्रसारण अब से लेकर 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 531.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में यादगार फिल्म से। बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

गीतमाला कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में वो दिन याद करो फिल्म से गीत। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गीतमाला कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं संतोष आनंद के बोल से सजे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का. फिल्म है प्रेम रोग और आवाज है लता मंगेशकर की. आइए सुनते हैं गीत.

गीतमाला कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और शारदा की आवाजों में सीमा फिल्म से गीत, बोल हैं गुलजार के और संगीत शंकर जयकिसान का।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से। अभी आपने सुना रविंद्र जैन के बोल और संगीत से सजे पहली फिल्म का गीत हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत उपहार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सनी भाई उसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाई यादगार, बोधन याद करो, उपहार, प्रेम रोग, सीमा, पहेली और तमन्ना फिल्म से गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है देशभक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम वतन के तराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत नया दौर फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

0: स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत की म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास
1: जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुलम वो तुम्हारे सितम

वतन के तराने कार्यक्रम में अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में नवरंग फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मेरे वतन के लोगो एल्बम से।

0: West Madhya Pradesh for the day. In Himachal Pradesh, intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
1: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh, with intermittent light rain being reported from several areas, including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today: Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, MD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rally is organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विधि

0: और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150

0: वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि

0: एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585, जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सनी भाइयों, समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का आज के प्रसारण में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सनिपयो अप्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे फिल्म तुम बिन से गीत। आइए सुनते हैं फिल्म से पहला गीत चित्रा की आवाज में।

अभी आपने सुना रेखा भरद्वाज और जगजीत सिंह की आवाजों में गीत। अब आइए सुनते हैं अगला गीत। अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका, और कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन से गीत।

सनिक भाई उसी के साथ होता है आंत कार्यक्रम चयनिका। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाई तुम बिन फिल्म से गीत। अभी वक्त हो चुका है आज के प्रसारण के समापन का। कल फिर होगी मुलाकात कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए जयश्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के सभी श्रोता मित्रों का अभिनंदन स्वागत। आप सभी को के बोले तो कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों, भीषण गर्मी, उमस के बाद झमाझम बारिश, कितना सुकून मिलता है ना। बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसके कारण कई बार परेशानी भी हो जाती है। खैर, कोई बात नहीं, और ऐसी बारिश में भीगने का आनंद भी कुछ और ही है। तो चलिए कुछ पल के लिए इस गीत के फुहार में भीग जाते हैं और इस बारिश का आनंद लेते हैं।

0: हाँ दोस्तों, बारिश में भीग तो जाइए लेकिन जरा संभल के। इस मौसम में वातावरण में नमी के कारण त्वचा संबंधी कई बीमारियां देखने को मिल जाती हैं, समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। पसीना, नमी, गीले कपड़े और स्वच्छता में कमी त्वचा पर फंगल संक्रमण, खुजली, दाने और अन्य संक्रमणों का बहुत बढ़ जाता है। ये सभी बढ़ जाते हैं। ऐसे में त्वचा की अतिरिक्त देखभाल बेहद जरूरी हो जाता है। जी हाँ, मगर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हैं ना, और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट्स भी। हर बार की तरह इस बार भी लगभग दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, दो एक्सपर्ट्स हैं, और हम आपको उनसे परिचय कराए देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश थोले जी, डर्माटोलॉजिस्ट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली। और हमारे साथ दूसरी डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, आशना मल्होत्रा जुनेजा जी। आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोता
0: जी।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोता मित्रों, बेझिझक होकर, बेधड़क होकर इस वक्त फोन उठाइए और बरसात के मौसम में त्वचा से संबंधित जो संक्रमण होते हैं उनके विषय में तमाम जानकारियों के लिए, यानी कि स्किन इन्फेक्शन इन रेनी सीजन, इसके विषय में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से अभी इसी वक्त बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। और हमारे डॉक्टर से बातचीत करने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए हमारा जो फोन नंबर है वो तुरंत नोट कर लीजिए, 011, यानी कि दिल्ली का स्टडी कोड है 011। इस फोन नंबर से पहले डायल कीजिएगा 2342108023 2342108080, और दूसरा फोन नंबर है 2342108082, यानी कि 2342108082। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। तो इसी वक्त आप हमें फोन कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। और चूंकि हमने आपको फोन नंबर बताया और हमारे साथ हमारे श्रोता मित्र भी जुड़ गए हैं, उनकी कुछ समस्या है, सबसे पहले हम उनकी बातचीत सुन लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो।
3: हेलो सर
0: जी। नमस्कार।
3: नमस्ते सर। सर, मैं कीर्ति बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि बारिशों के सीजन में हमारे पिंपल्स क्यों बढ़ जाते हैं?
0: जी डॉक्टर साहब।
1: हेलो मैम। बारिश के सीजन में स्वेटिंग बढ़ने के कारण हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो एक्ने करते हैं, उनमें क्लॉगिंग के वजह से, ग्लैंड्स बंद होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन से पिंपल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार मौसम के चलते, ह्यूमिडिटी के चलते स्किन भी ऑयली हो जाती है, ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए भी थोड़े एक्ने ज्यादा महसूस हो सकते हैं। मैम, चेहरा नॉर्मल पानी से फेस वॉश करने की आपको ऐसी कोई स्पेशल

0: नहीं, पर नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार आप फेस धोइए, और हो सके तो ठंडे में रहिए, आपको स्वेटिंग कम हो इसका खास ख्याल रखें।
1: थैंक यू सर।
2: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो स्वेटिंग होती है वही मेन कारण होता है या फिर कुछ और भी कारण होते हैं?
0: आपके जो एग्जिस्टिंग कारण है एक्ने होने के, पिंपल्स होने के, वो भी होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस, हेयर ऑयल ज़्यादा लगाना, या कई केसेस में डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंगो का सेवन करना। बट स्वेटिंग ज़्यादा होने से, ऑयल ग्लैंड्स का क्लॉग होने से, ऑयल ग्लैंड्स हमारे और स्वेट ग्लैंड्स बंद होने से भी पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं। और कई बार जो हमें पिंपल्स लगते हैं वो पिंपल्स होते भी नहीं है, वो एक पेरिपोराइटिस नाम का इन्फेक्शन होता है, जिस जो बाल तोड़ की तरह ही होता है।
2: डॉक्टर साहब, आपने एक बात की, बड़ी बात की, कि मैंगो के ज़्यादा सेवन से भी पिम्पल्स हो सकते हैं।
0: जी,
2: ये क्या यह बिल्कुल सही है?
0: सारे केसेस में नहीं, पर कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि मैंगो, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये एग्रीवेट करते हैं पिंपल्स।
2: जी डॉक्टर अश्ना जी, अभी जैसे इन्होंने कहा कि क्योंकि लड़कियों को खासकर, महिलाओं को खासकर ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि पिंपल्स ना निकले, और पिंपल्स कम से कम हो या फिर ना ही निकले तो बेटर हो, ताकि खूबसूरती बनी रहे। तो सब क्या कहना चाहेंगे इसमें, और किस प्रकार की सावधानी रहनी चाहिए कॉस्मेटिकली?
3: कॉस्मेटिकली सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना चेहरा अच्छे से दिन में 2 बार ही धोएं, गंदे हाथ चेहरे पे बार बार ना लगाएं। बहुत ज्यादा मेकअप अगर आप यूज करते हैं तो ध्यान रखिए आपकी मेकअप ब्रशेस, आपका मेकअप सब साफ रहे
2: जी।
3: और साथ ही साथ सोने से पहले आप अपना मेकअप अच्छे से उतारें, और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा मीठी, ज्यादा चिकनाई, ये सब चीजें थोड़ी कम खाएं।
2: डॉक्टर साहब, मीठी चीजों से भी क्या पिंपल्स बढ़ने की संभावना रहती है?
3: जी, मीठी चीजों से, फास्ट फूड से, कुछ लोगों ने, जैसे सर ने कहा, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, जिससे कि खाने पीने में बहुत, जो हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, उनसे एक्ने जैसी चीजें आगे एग्रीवेट हो सकती हैं।
2: जी डॉक्टर, इसके विषय में कुछ और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और श्रोता मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
4: नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बताएं आप।
0: नमस्कार सर,
2: आपका शुभ नाम?
4: रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड से।
2: जी,
4: तो मेरा पैर में जो है, अब डॉक्टर बता रहे हैं कि यूरिक एसिड हो गया, तो उससे पहले उस जगह में उसके आसपास खुजली हुआ था बहुत, तो खुजली खुजलाते में वहाँ पे जो है उस टाइम तो अच्छा लग रहा था खुजलाने में, लेकिन बाद में उसमें खरोच आ गया
2: जी।
4: और उसके 2 दिन बाद जो है पिंडली में दर्द होने लग गया
2: जी।
4: तो मुझे लगा कि कहीं हड्डी में चोट लग गया कहीं से, लेकिन चोट तो कहीं से लगा नहीं, तो डॉक्टर साहब के पास गया तो बोला ये तो यूरिक एसिड है। तो अभी खून टेस्ट के लिए दिया है सर, अब इसके आगे हमें क्या परहेज करना पड़ेगा जिससे ऐसा ना हो पाए?
2: जी डॉक्टर
0: जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपको कोई जॉइंट का इशू है, कोई एग्जैक्टली कोई स्किन का प्रॉब्लम है ऐसे आपकी बातों से लग नहीं रहा है, बट अगर वहाँ पर स्किन पर आपको रेडनेस है या इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, हो सकता है ये कोई एलर्जिक एक्जिमा हो या जो अंडरलाइंग डिजीज है वही आपको कॉज कर रहा है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें सर।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मैसेज भी आया है, व्हाट्सएप मैसेज भी है, और ये है विजयपुरा कर्नाटका से, इनका नाम तो उन्होंने लिखा नहीं है, और ये कहते हैं कि आई गेट फ्रीक्वेंट इचिंग इन माय रिस्ट्स, अंडर आर्म्स एंड फुट्स, आई ऑल्सो गेट रेडनेस एंड इचिंग अराउंड माई प्यूबिक एरिया। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने बहुत सारे दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनसे संभव नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया।
0: सर, बिना देखे तो एग्जैक्टली डायग्नोसिस बताना बहुत मुश्किल होगा, बट अगर सिर्फ इचिंग है और स्किन पे और कोई रेडनेस नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, तो हो सकता है कि इनकी एटोपिक टेंडेंसी, एटोपिक टेंडेंसी से मैं कहना चाहता हूँ कि बॉडी थोड़ी सेंसिटिव है, तो अगर इनको आंखों में खुजली होना, बार बार जुकाम होना, नाक में खुजली होना, या कोई जेनेटिक हिस्ट्री है अस्थमा की, ये सब शिकायतें साथ में है, तो हो सकता है इनकी एटोपिक टेंडेंसी है और इनको सेंसिटिविटी से इचिंग हो रही है, इनको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और तब तक एंटी एलर्जिक्स का सेवन करें, और हो सके तो बॉडी को नहा कर मॉइस्चराइज करें, नहाने के बाद 7 से 8 मिनट के अंदर मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, अच्छा एक मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, तो एंटी एलर्जिक्स और मॉइस्चराइजर लगाए, और पॉसिबल हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं।
2: जी डॉक्टर अश्ना जी, अक्सर अभी जैसे अभी एक हमारे श्रोता मित्र ने फोन किया था उत्तराखंड से, रघुवीर जी नाम था उनका, और इन्होंने कहा था कि पैरों में दर्द रहता है या फिर इचिंग होती है, जख्म हो गया है, पैरों की जब बात होती है तो पैरों की सुंदरता भी देखी जाती है।

0: जाती है, तो इसमें किस प्रकार की समस्या आ सकती है जब इस प्रकार की इचिंग होने लगे या फिर कुछ जख्म होने लगे तो खासकर जब एड़ियां फटी होती हैं देखी जाती हैं तो उसमें भी जख्म होने की संभावना बनी रहती है, और खासकर बरसात के मौसम में तो कुछ बढ़ने की संभावना रहती है।
1: जी, बरसातों के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पैरों का ध्यान रखना। ज्यादातर क्या होता है, पैर बंद गीले जूतों में रह जाते हैं, ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं उन पे, जिसकी वजह से पैरों में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। तो सबसे जरूरी ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि गीले जूते ना पहने। जब भी जूते पहन रहे हैं पैर अच्छे से सुखा के, उंगलियों के बीच में सुखा के, साफ सुथरे मोजे पहन के फिर सूखे जूते पहने। कोशिश करें बहुत लंबे समय तक गीले मौसम में बंद जूते ना पहने। एड़ियां यदि फटी हैं तो रोज रात को अच्छी तरह से एक अच्छी क्रीम लगा के, मोजे लगा के सोएं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम हेमंत।
0: जी हेमंत जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: सर, मैं ना डॉक्टर अखिलेश से बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग हेयर फॉल टेंडेंसी जो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसके रिगार्डिंग। सर
0: जी, डॉक्टर
3: जी, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है और कई लोगों की समस्या होती है कि बारिशों के मौसम में उनका हेयर लॉस थोड़ा बढ़ जाता है। बट अगर साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो बारिश का पानी सीधे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, ये ऐसा कोई गारंटीड प्रूफ नहीं है। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश्ड है जो ये इसके कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो सीजनल हेयर शेडिंग होती है उसमें कहा गया है कि समर्स में जो यूवी रेज का इम्पैक्ट हमारे स्कैल्प में होता है तो उससे हमारे जो एनाजिन जो लंबे हेयर होते हैं उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, और एनाजिन हेयर का काउंट जो हमारे बॉडी के लंबे हेयर होते हैं उसका काउंट बारिश होने तक थोड़ा कम होने लगता है यूवी रेज की वजह से। बट ये भी कोई गारंटीड एविडेंस नहीं है, बस ये थ्योरीज है। कई बार स्कैल्प ऑयली होने की वजह से या बालों में ज्यादा तेल लगाने की वजह से या फ्रीक्वेंट हेयर वॉशिंग करने की वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ रहा है ऐसे महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसे लग रहा है कि बालों का झड़ना बढ़ गया है और 100 से ज्यादा बाल एक दिन में आपके जा रहे हैं तो आप कुछ दिन वेट करें, हो सकता है ये नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है और टेलोजन है जो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर भी एक दो महीने में आपको अगर लगता है कि शेडिंग हमारी परसिस्टेंट है तो आप अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले।
2: सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि स्पेशल प्रिकॉशन जो हम रेनी सीजन में ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा हेयर फॉल कम हो या फिर एलर्जेटिक जो डिसीज है वो भी कम हो।
3: सर थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आप अपने आपको एनर्जेटिक रखने के लिए थोड़ा हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और खासकर फीमेल्स के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आपको कोई डिफिशियंसी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है या आपका विटामिन B12 बहुत कम है तो आप उसको डॉक्टर की सलाह से पूरा करें और सप्लीमेंट्स लें, और खाने में प्रोटीन डाइट अच्छा रखें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और डॉक्टर आशना जी, आपके लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है डॉक्टर अर्चना गुलाटी ने भेजा है, कहते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
1: तो प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा चीजें ना करें अपने चेहरे पे, बहुत बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज करें, बॉडी पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एलैबोरेट चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, वैसे देखा जाता है कि मानसून के मौसम में त्वचा यानी कि स्किन की समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर आशना?
1: मानसून में स्किन की समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि हवा में नमी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ये सारा एनवायरनमेंट जो रहता है फंगस के लिए बहुत एक तरह से फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है बढ़ने के लिए।
0: जी अभी जैसे कि डॉक्टर अखिलेश जी बता रहे थे कि बारिश के मौसम में, और जब ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि बारिश के मौसम में जो बाल झड़ना तेज हो जाता है, ज्यादा गिरते हैं बाल, तो क्या महिलाओं के लिए तो उसके लिए खास का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गीले बाल, क्योंकि लंबे बाल बड़े बाल होते हैं इसलिए उनको सुखाना जरूरी होता है, इसमें किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सो बाल जितना हो सके उतना सूखे रखें, बट जाहिर है मौसम ऐसा है बाल कहीं ना कहीं भीगेंगे, तो इसलिए जरूरी रहता है कि खाने पीने

0: पे खासकर से ध्यान दें, प्रोटीन, दाल, हरी सब्जियां, ये सब थोड़ी ज्यादा खाएं। ध्यान रखें कि आप अपने सप्लीमेंट्स, विटामिंस, मिनरल्स हम टाइम पे ले रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, यानी कि खान पान का भी अगर ख्याल रखा जाए तो काफी हद तक यानी कि हेड ड्रॉप को हम बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और खान पान में जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि मैंगो का खासकर उन्होंने कहा था, और जो तेल सब का इस्तेमाल होता है वो उन पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि स्किन की जो समस्या है, बालों की जो समस्या है, कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम काफी देर से बातचीत भी कर रहे हैं, बारिश में थोड़ा सा भीगने का मौसम तो कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी अगर एक संगीत में एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें तो कैसा रहेगा? ब्रेक के बाद हम दोबारा लौट के आते हैं।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौट आए हैं। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं अपना फोन नंबर ताकि आप हमें इसी वक्त कॉल कर सके। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं और बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों यानी कि त्वचा संबंधी बीमारियों के विषय में जानकारियां ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। और चलिए एक फोन कॉल आया है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है। फिर कुछ देर के बाद फिर हम जुड़ेंगे और उनसे फिर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में शरीर के किन अंगों में यानी कि रिस्क फैक्टर कहाँ कहाँ होता है, ज्यादा होता है, किन अंगों में ज्यादा त्वचा संबंधी संक्रमण की समस्या बनी रहती है?
1: जी, अगर हम संक्रमण या इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के फोल्ड्स जिसे सिलवटे कहते हैं, जैसे अंडर आर्म्स, बगल हमारी, स्तनों के नीचे का हिस्सा, प्राइवेट पार्ट्स, प्यूबिक एरिया
0: जी,
1: जांघे और उंगलियों के बीच का हिस्सा, कान के पीछे का हिस्सा, पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा, इन सब में नमी बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो अगर ऐसे जब इन्फेक्शन, खासकर जब उमस भरी गर्मी होती है उसमें देखा जाता है, बारिश में तो भीगते होते हैं और जब सुखा नहीं पाते हैं, गीला हो जाता है, तब ऐसी समस्या होती है। लेकिन जब उमस होती है जैसे कि अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने

0: में काफी उमस होती है तो उस समय नमी ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार सुखा कर रखना चाहिए या फिर क्या किस प्रकार की समस्या हो सकती है?
1: इस मौसम में सबसे जरूरी है आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि बाहरी चीजों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो कॉटन के कपड़े सबसे सही रहते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि जब नहाएं तो पहले अच्छे से खुद को सुखाएं, तभी कपड़े पहने अपने।
0: जी डॉक्टर साहब, और देखा जाता है कि जो जूते मोजे होते हैं वो बारिश के मौसम में गीले हो जाते हैं, और क्या उनसे भी समस्या हो सकती है?
1: उनसे सबसे ज्यादा समस्या होती है
0: जी।
1: क्योंकि जूतों को सूखने में भी और ज्यादा समय लगता है
0: जी।
1: तो कोशिश करें कि सूखे जूते ही पहने, गीले जूते दोबारा ना पहने, और जहां तक हो सके बंद जूते ना पहने बारिश के मौसम में
0: जी। बारिश के मौसम में क्या डॉक्टर साहब घमौरियां कुछ कम हो जाती हैं क्या ऐसे? क्योंकि कई लोगों का यह मानना होता है कि अगर हम बारिश में नहा लेंगे तो घमौरियां कम हो जाएंगी, और कई बार बच्चों को बारिश भीगने के लिए भेज देते हैं, तो क्या यह सही है?
1: ऐसा नहीं है। बारिश के मौसम में भी जब नमी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो घमौरियां बढ़ सकती है
0: जी,
1: क्योंकि वो भी स्किन फोल्ड्स पे काम करती है, स्किन फोल्ड्स पे ज्यादा होती है घमौरियां, है ना। तो इसलिए हवादार रहना, कॉटन कपड़े पहनना ये ज्यादा जरूरी रहता है
0: जी। डॉक्टर अखिलेश जी।
2: जी सर,
0: हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, और ये मैसेज लिखने वाले इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, आशीष बॉय करके नाम से है ये, और ये कहते हैं कि मेरे अंकल को दाद है और बिल्कुल भी, बहुत सारी दवाइयां ले ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। ये आशु है, लखनऊ से हैं, और सर मेरे भी कभी कभी फेस पर दाने निकल आते हैं, इसके लिए क्या इलाज है?
2: जी पहले तो दाद की बात करते हैं। दाद अगर उनका ठीक नहीं हो रहा है तो ये समस्या आज करोड़ों लोगों को इससे जूझना पड़ता है, और इसका मेन कारण है ट्रीटमेंट का पूरा ना करना या स्टीरॉयड युक्त क्रीम अपने प्राइवेट पार्ट्स पे खासकर लगाना। स्टीरॉयड युक्त क्रीम हमारी इम्यूनिटी को लोकली कम कर देती है, लगाने के बाद कुछ समय तक तो हमें शायद अच्छा लगे, खुजली महसूस ना हो, बट ऐसी क्रीम जिसमें बीटा मिथासोन हो, मोमेटासोन हो, क्लोबेटासोल हो, आप दोबारा फिर से सुन लीजिए, ऐसी क्रीमें जिसमें बीटा मिथासोन, क्लोबेटासोल या मोमेटासोन है, उन क्रीम को अगर आप प्राइवेट पार्ट्स पे या हमारे दाद वाले हिस्से पर लगा रहे हो तो स्किन की इम्यूनिटी कम होकर इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और चूंकि बहुत तरह तरह के हमने एंटीफंगल यूज ऑलरेडी कर रखे हैं और उसका रैम्पेंट यूज है, तो कुछ केसेस में रेजिस्टेंस भी दवाइयों के से पाया गया है, और इसमें ट्राइकोफाइटोन इंडोटीनिया नाम का एक फंगस की एक अलग प्रजाति पाई गई है जो ट्रीटमेंट से जल्दी मरती नहीं है, और इसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो 6 से 8 हफ्ते कम से कम ट्रीटमेंट पूरा ले।
0: डॉक्टर साहब, दाद के विषय में कुछ और हम बातें करेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक श्रोता मित्र से जुड़ जाते हैं। हेलो
3: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ सर,
0: गुड़गांव से। योगराज जी बोल रहे हैं जी, क्या समस्या है आपकी?
3: समस्या एक तो डॉक्टर साहब, मेरे जो पैर की एटी मतलब हमेशा दरारी खुली रहती है
0: जी,
3: और गर्मियों में ज्यादा होता है और बारिश के मौसम में दर्द भी होने लगता है। और एक मस्से के बारे में भी बताएं जो गुद्दी में मतलब काफी ज्यादा मस्से निकले हुए हैं
0: जी। डॉक्टर साहब इनकी,
3: मैं लाइन पे हूँ डॉक्टर साहब
0: जी।
2: जी जो आपने बताया कि आपकी एडिया फट रही है, राइट? तो सर आपके लिए तो ये मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम उमस वाला होता है, और इसमें जो भी सूखे दाग वाली दिक्कतें, सूखी चमड़ी वाली दिक्कतें होती है, जैसे एडियो में दरार है, क्रैक फीट जिसे हम कहते हैं, ये एक ड्राई स्किन की बीमारी है, तो इस मौसम में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आप नहाने के बाद इमिजिएटली अच्छे से मॉइस्चराइज करिए पैरों को, और रात में सोते हुए भी मॉइस्चराइज करिए, एक थिक ग्रीजी थोड़ा मोटा लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर आप लगाइए, और पैरों को बार बार साबुन से ना धोए, नॉर्मल पानी से धोए, और अगर डिटर्जेंट पैरों को लगता है या आप घर का बर्तन का कपड़े का काम करते हैं तो थोड़ा ऊंचे में बैठकर काम करें।
0: डॉक्टर आशना जी, अभी इन्होंने बात की मस्से की बात की, तो क्या ये बारिश के मौसम में मस्से की समस्या कुछ ज्यादा बढ़ सकती है या फिर ये जनरल है? ये
1: मस्सों का इस मौसम से कोई लेना देना नहीं है,
0: लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है तो इसलिए जवाब देना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए।
1: इनको तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के उनको निकलवाना ही पड़ेगा,
0: निकलवाना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, आप जानकारी दे रहे थे दाद के विषय में, और डॉक्टर साहब ये अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर

0: किसी एक व्यक्ति को दाद हो गया है तो क्या दूसरे व्यक्ति को भी दाद हो सकता है?
1: जी, ये बहुत ही कॉमन है कि एक घर के तीन चार लोगों को साथ में दाद हो जाए। दाद का एक दूसरे में होने का कारण ये भी है कि हमारे तौलिए कपड़े हम एक दूसरे से साझा करें, हम एक दूसरे से शेयर करें, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपके हाथों की उंगलियों के जो नाखून है उनको थोड़ा छोटा रखें, बार बार खुजली ना करें। और जैसे हमने कोविड में किया था, किसी से भी हैंड शेक करें तो आप अपना हाथ अच्छे से धोएं और प्राइवेट कपड़े प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा सूखा रखें और अपने खासकर कपड़े तौलिए एक दूसरे से शेयर ना करें।
0: डॉक्टर आशना जी, ये जो मिक्स्ड क्रीम है, ये स्टीरॉयड वाली, क्या इसमें दाद में इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्या?
2: बिल्कुल भी नहीं। अक्सर काफी लोग स्टोर से केमिस्ट से खरीद के खुद ही से ये क्रीम लगाते हैं जिससे ऊपर से दाद की खुजली दब जाती है पर अंदर से इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ते रहता है जिससे कि स्थिति और खराब होती रहती है। तो खुद से क्रीम खरीद के लगाने से अच्छा मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने पास किसी अच्छे विशेषज्ञ के पास जाएं और उनको दिखाएं और उनसे लिखी हुई दवा ही खरीदें।
0: जी डॉक्टर साहब, वैसे कई बार ये होता है कि दवाइयां नहीं मिल पाती है, दूर तक हो रहती है, दूर हो जाती है, तो घरेलू कोई उपाय है?
2: घरेलू उपाय में हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं जिसमें हम सूती सिंथेटिक कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने, गर्मी पसीने में ज्यादा ना रहे, रोज साबुन से नहाए, अच्छे से सुखा के कपड़े पहने, पसीना आए तो फिर नहाए।
0: जी डॉक्टर साहब, दाद होने का मेन कारण क्या होता है?
1: सर, दाद हमारे नमी वाले हिस्सों में जल्दी संक्रमण कर देता है। दाद हम नमी की वजह से नहीं हो रहा है, बट दाद का जो कीटाणु है वो हमेशा से शरीर पर या हवा में या कपड़ों में रहता ही है। बस नमी के कारण उसको एक खाद मिल जाता है जिसपे वो जल्दी थ्राइव करता है। तो दाद एक इन्फेक्शन है जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसे रिंगवर्म भी कहा जाता है। तो फंगल कीटाणुओं के इन्फेक्शन संक्रमण से रिंगवर्म या दाद हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फोन कौन है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया है। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब जी, बता रहे थे अभी कि जो रिंग टाइप का जो होता है इन्फेक्शन होता है, उससे काफी दाद होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी सर, जी दाद को ही रिंगवर्म कहा जाता है सर।
0: जी,
1: और रिंगवर्म जो है खासकर हमारे प्राइवेट पार्ट्स या बॉडी के फोल्ड्स पर हमें संक्रमण करता है, और इसका इलाज कम से कम 6 से 8 हफ्ते कराना पूरा जरूरी है। कई केसेस में ट्रीटमेंट लंबा भी चल सकता है, तो अब अपने आप से केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास जाकर स्टीरॉयड युक्त क्रीमें ना खरीदे, स्टीरॉयड युक्त क्रीमें ना लगाए, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले और इलाज अपना पूरा कराए।
0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में जब भी कोई इस प्रकार से रिंगवर्म या फिर ये जो दाद है ये हो जाए तो इसे सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि पाउडर, जो टैल्कम पाउडर है वो सब लगा लेते हैं, क्या ये सही होता है?
1: सर, टैल्कम पाउडर मैं मानता हूँ कि वो आपके स्किन को ड्राई रखने में मदद करता है, बट वो इन्फेक्शन को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता। वो इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही उसे बार बार होने से रोक सकता है। कई केसेस में खासकर फॉरेन कंट्रीज में ये पाया गया है कि जो टैल्कम पाउडर वाली कंपनीज है उन पे केसेस हुए हैं कि पाउडर के कुछ अंश है जिनसे कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली इतने जल्दी पाउडर को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और अगर आप पाउडर लगा रहे हैं तो बस आप ये याद रखें कि ये कोई इलाज नहीं है, बस आपकी त्वचा को सूखा रखने में मदद कर रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो
3: जी, नमस्ते
0: जी, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
3: अमरोहा से साजिया बात कर रही हूँ मैम। सर
0: जी, क्या पूछना चाहते
3: हैं? हमारे जो है ना भाई के बैक साइड पर बहुत एलर्जी होती है, गहरे गहरे वो दाग बन जाते हैं, उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से भी सलाह ले चुके हैं, वो सही नहीं होते दाग गहरे गहरे।
0: जी डॉक्टर आशना जी,
2: अगर उनको एलर्जी है सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार की एलर्जी है, उसकी वजह क्या है। जब तक वजह नहीं पता चलेगी उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा, तो जरूरी है एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनकी सलाह मानें, कोशिश करें नाखून अपने छोटे रखें और उस एरिया को ज्यादा ना खोजाएं और कॉटन

0: कपड़े पहने, जीन्स वगैरह ना पहने।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बरसात के मौसम में जख्म कई बार जल्दी सूखते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
2: सर, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हमें अपने स्किन को कोशिश करके ड्राई रखना है। नहाने के बाद इमीडिएटली तौलिए से ड्राई रखे, बहुत सिंथेटिक या टाइट कपड़े ना पहने, कॉटन के हवादार कपड़े आप पहने, और इन्फेक्शन होने के बाद उसका इलाज जरूर कराए तो ठीक होना बहुत हद तक पॉसिबल है।
1: डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बारिश के मौसम में मानसून में साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो क्या ये सही है, करना चाहिए?
2: सर, जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है या जिनको बार बार एलर्जीज एक्जिमा हो जाता है, उन लोगों ने सैनिटाइजर या साबुन का यूज कम से कम करना चाहिए। बट अगर आपको दाद है तो आप दूसरों से हाथ मिलाने से पहले सैनिटाइजर का यूज करें, और नहाते वक्त एक अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें, तो आपको संक्रमण फैलने ना देने में और अपने संक्रमण ठीक करने में भी बहुत मदद होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कारम।
1: नमस्कारम,
3: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
3: मुझे पूछना है, एक बीमारी है अर्टिकेरिया, शीत पित्ती।
1: जी,
3: तो ये शीत पित्ती क्या है और इसका नाम शीत पित्ती क्यों है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी आशना जी,
0: तो जो अर्टिकेरिया होती है जिसको हम पित्ती बोलते हैं, वो एक तरह की एलर्जी होती है। इस एलर्जी के कई वजहें होती हैं, जैसे किसी खाने पीने की वस्तु से हो सकता है, किसी कपड़े से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, इसके कई अनेक कारण हैं। इसका एग्जैक्ट कारण ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी दवा है वो आप रेगुलर लेंगे, उसका कोर्स पूरा करेंगे और कुछ चीज़ों का परहेज करेंगे। कोई भी अगर ऐसी चीज़ लगती है जिसको खाने से, पीने से या पहनने से एलर्जी बढ़ रही है, दिक्कत बढ़ रही है, तो उस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि उसको आप टेस्ट करें कि आप एक बार खाया, आपको लगा आपको एलर्जी है, तो आप फिर से एक बार चेक करने के लिए दोबारा खाएं, ऐसे नहीं करना है। परहेज़ करना है उन चीज़ों का, उसी से जल्दी ये ठीक होगा।
1: डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और ये मैसेज भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से। ये कहते हैं कि मेरे लिप्स में, होठों पे जैसे बहुत जलन सी होती है, और इसके लिए कौन सा साबुन यूज करना चाहिए मानसून में?
2: सर, जलन के लिए कोई स्पेसिफिक साबुन आता नहीं है। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि आप हो सके तो कम से कम साबुन यूज करें, और कोई क्लेंजिंग क्लेंजर या पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर का यूज करें अपना फेस वॉश करने में। कई बार जलन का कारण हमारी अंदरूनी एलर्जीज भी होती है, खासकर एटोपिक डर्मेटाइटिस वाली बीमारी जिसमें होंठ बार बार फटते हैं और जलन हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में जब होंठ फटने लगते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से कोई ऐसे कोई उपाय?
2: सर, लिप बाम का नियमित प्रयोग करना और पानी का हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी का सेवन करना, यही।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद में हम अपने श्रोताओं के साथ फिर मिल बैठेंगे और बहुत सारी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और इस छोटे से एक लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हम आपको एक बार फिर से अपना फोन नंबर बता देते हैं 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। लोग सब हमारे साथ कुछ श्रोता और जुड़ गए हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम राजेंद्र बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मेरा नाम राजेंद्र करमपुरा बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी क्या पूछना चाहते हैं?
2: हाँ तो और दोनों भगवान को नमस्कार
1: जी। राजेंद्र जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। जी
2: अब आ रही है।
1: जी अब ठीक आ रही है।
2: हेलो
1: जी जी बताएं।
2: अब आ रही है मेरी आवाज?
1: बिल्कुल सही आ रही है, बताएं।
2: हेलो
1: जी जी बोले अपनी। हेलो दोस्तों इनसे हमारा संबंध फिर एक बार टूट गया है, खैर कोई बात नहीं, इनसे हम फिर दोबारा जुड़ेंगे तो और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे भी हम रूबरू होते हैं। और एक समस्या ये है कि ये फोन आया है जी, एक व्हाट्सएप मैसेज ले रहे हैं और इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है कि मैं कृष्णा अपनी बिटिया 27 साल के लिए एक सवाल करना है कि एक पैर के तलवे में एक्जिमा जैसी खुजली लगभग 15 से 18 वर्षों से है, इलाज लेकर थक गए हैं, समय समय पर ट्रिक रहता है, नींद में भी खुजाती रहती है, हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब डॉक्टर अखिलेश जी।
3: सर एक्जिमा अगर उनको नजर आ रहा है और स्किन में चेंजेस नजर आ रहे हैं तो हो सकता है वो एक्जिमा हो या सोरियासिस हो, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके इसका ट्रीटमेंट तो लेना ही चाहिए। पर अगर कुछ टेम्पररी रिलीफ के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो मॉइस्चराइज स्किन को रखना बहुत ज़रूरी है, नहाने के बाद और शाम में सोते वक्त एक मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़रूर करें। अगर खुजली बहुत ज़्यादा है तो एंटी एलर्जिक्स का यूज़ करें। अगर डिटर्जेंट में पैर जाता है कपड़े धोते वक्त तो थोड़ा ऊंचाई पे बैठ के पैर धोए। बार बार साबुन, खासकर जो हार्श साबुन होती है, जो एंटीसेप्टिक सोप्स होती है उनका उपयोग ना करें, माइल्ड सोप का यूज करें, एंटी एलर्जिक्स यूज करें और मॉइस्चराइजर यूज करें।
1: डॉक्टर राशना जी एक मैसेज है, अलका जी का है और इनकी उम्र है 46 साल और ये दिल्ली से हैं। कहते हैं कि मैम शुड वी यूज ए सेपरेट बॉडी वॉश एंड फेस वॉश व्हाइल बेदिंग एंड और इज इट ओके टू यूज ए सोप लाइक जो बाजार में मिलते हैं?
4: जरूर हमें बॉडी वॉश फेस वॉश दोनों यूज करने चाहिए। फेस पे हमारी स्किन हल्की सी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो अगर हम फेस के लिए एक डिफरेंट एक अलग तरह का सोप या फेस वॉश यूज करना चाहें तो वो भी अच्छी

0: चीज है। अगर बॉडी वाला जो आप बॉडी वॉश या बॉडी सोप यूज कर रहे हैं, अगर वो एक माइल्ड सोप या बॉडी वॉश है तो उसको आप फेस पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
1: डॉक्टर अखिलेश जी, एक और मैसेज है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून, आप दोनों को गुड आफ्टरनून कहा है। और डॉक्टर, बरसात में पानी दूषित हो जाता है तो पानी का इस्तेमाल किस प्रकार और कितना करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। यह है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड। और क्या इनसे भी कोई समस्या हो सकती है, स्किन संबंधी समस्या हो सकती है?
2: अगर पानी का सेवन की बात कर रहे हैं तो पानी फिल्टर करके पिए, और अगर आप जो नहाने के लिए या डे टू डे यूज में जो पानी यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको विजिबली नजर आ रहा है कि पानी संक्रमित है या उसमें बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज है, तो आप उसको फिल्टर करके यूज कर सकते हैं, या तो आप उसमें फिट करिए एलम जो हम कहते हैं, आपके नहाने जो आपका सप्लाई का टैंक है, सप्लाई टैंक में फिट करिए एलम को, थोड़ा मिक्स करके रखे तो वो इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होने देगा। वैसे पानी से बहुत ज्यादा कोई समस्या होती नहीं है।
1: डॉक्टर साहब जी, वाटर टैंक में आपने बताया कि फिट करे तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए?
2: अगर आपकी 500 या 1000 लीटर की टैंक है तो आधा से एक किलो बहुत होता है। अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, कम भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारी इम्प्यूरिटीज जो हमें नजर आ रही है पानी में वो नजर ना आए।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशना जी, बलजिंदर जी हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज आया है इनका, और इनकी उम्र है 31 साल। ये कहते हैं कि मेरी आईलिड यानी कि, और दूसरी बात, कोहनी पर स्किन 3 मंथ से ड्राई होती है और खुजली भी होती है, सेफ हो जाती है स्किन और पपड़ी सी निकलने लगती है। मैंने सर्च किया, उसमें एक्जिमा या सोरासिस दिखा रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टेंशन हो रही है, बताइए।
0: सबसे पहले तो सर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये सही तरीका नहीं है। हालांकि ये एक्जिमा या सोरायसिस दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, वो ज्यादा बेहतर देख के ही पता चलेगा, पर कृपया सर्च करके अपने आप से दवा ना करें किसी भी चीज की।
1: सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है
0: जी। इसके अलावा जो थोड़े से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, एक बिल्कुल माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें नहाने के लिए, बहुत ज्यादा सोप भी ना यूज करें। उसके बाद नहाने के एकदम बाद अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, जहां जहां पे एक्जिमा हो रहा है मॉइस्चराइजर या नारियल का तेल भी थोड़ा सा लगा लें
1: जी। डॉक्टर अखिलेश जी, एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा कि टेल अबाउट मुल्तानी मिट्टी, इसका प्रयोग कैसे करें?
2: सर, मुल्तानी मिट्टी तो हमारे करिकुलम में नहीं है, हमारे बुक्स में तो नहीं है, बट मैं एज अ जनरल यूज में आपको बता सकता हूँ कि आप कभी कभी महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। उससे स्किन को ना ही कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ना ही कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्किन को थोड़ा सा स्क्रब करके क्लीन करने में हेल्प कर सकता है, बट उसके अलावा मुझे उसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं लगता।
1: डॉक्टर राशना जी, क्या मॉनसून में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए?
0: बिल्कुल, मॉनसून में बहुत लोगों को ये लगता है कि बादल हैं, धूप कम है, तो वो सनस्क्रीन का प्रयोग काफी समय नहीं करते, जिससे स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचता है
1: जी।
0: तो हालांकि हमें सूरज दिखता नहीं है, सूरज की किरणें नहीं नजर आती, बादल दिखते हैं, फिर भी जो यूवी रेज हैं वो बादलों के थ्रू आती हैं, हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं। मॉइस्चराइजर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट सनस्क्रीन डेली की डेली रोज सुबह सबको एक बार लगाना ही चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जो सूखी त्वचा है और जो बहुत सेंसिटिव है, उनके लिए क्या सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए?
0: उनको तो मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए और सनस्क्रीन भी यूज करना चाहिए।
1: वैसे कब यूज करनी चाहिए, कितनी बार यूज करनी चाहिए?
0: सुबह एक बार तो चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन बेहद जरूरी है लगाना। बाकी अगर कर सकते हैं तो हर 3-3 घंटे में दोबारा सनस्क्रीन लगाएं, अगर बाहर आउटडोर का कोई काम है, बाहर का काम है, अगर कमरे में रहते हैं या ऑफिस जॉब है तो सुबह एक बार भी काफी है।
1: तो सब ये बारिश में किसी प्रकार का नुकसानदायक तो नहीं हो सकता है?
0: बिल्कुल भी नहीं, पर थोड़ा सा अपनी स्किन के हिसाब से, अगर स्किन थोड़ी हैवी लगती है ये सब लगा के, तो एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन हम यूज कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर साहब एक फोन कॉल आ रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मेरा नाम, मैं घासीराम बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान से
1: जी। क्या प्रश्न आपके?
3: मैं ये पूछना चाह रहा था कि नहाने के बाद डेली तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
1: डॉक्टर साहब
2: खम्मा गनी घासीराम जी, जी नहाने के बाद तो तेल लगाना नहीं लगाना आपकी

0: चॉइस है सर, आप जरूर डेली तेल लगा सकते हो, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपके चेहरे पे मुहासे या पिंपल्स बार बार हो रहे हैं तो आप कम से कम तेल लगाएं। हफ्ते में एक बार तेल लगाना भी बहुत होता है। और अगर आपको डैंड्रफ रूसी की समस्या भी बार बार हो रही है तो बहुत डेली तेल लगाने से बचे, हफ्ते में एक बार तेल लगाना बहुत होता है। और तेल कौन सा लगाए, तो नारियल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल जो क्या कहा जाता है, वो आपके स्किन और हेयर के लिए ठीक होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने तेल लगाने की बात की, बरसात के मौसम में जैसे बारिश में अक्सर बाल जो गीले होते हैं, तो क्या उस वक्त तेल लगाना चाहिए?
2: बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं, उसमें नमी होती है, उसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं तो वो फंगस के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो कोशिश करें कि अगर तेल का उपयोग करना है तो अच्छे से बाल सुखाने के बाद ही करें, गीले बालों पर ना लगाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिलेश जी, मधुमेह रोगियों मधुमेह रोगियों के लिए कई बार, डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनके लिए कई बार परेशानी हो जाती है बारिश के मौसम में, और खासकर जब जख्म हो जाते हैं तो बारिश के मौसम में परेशानी होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: सर, डायबिटीज के पेशेंट में जो हमारी स्किन की इम्यूनिटी है वो थोड़ी उनके ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से और न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स में उतनी ताकत ना रहने की वजह से इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत समस्या होती है। तो अगर उनको छोटा सा भी कोई कट लग रहा है या कोई छोटा सा दाना हो गया है, छोटा सा छाला हो गया है, तो तुरंत स्किन के डॉक्टर या अपने डायबिटीज के डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराए। और प्रिवेंशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, तो हमेशा नहाने के बाद मॉइस्चराइज रखे, सॉक्स पहने, फुल पैंट्स पहने, ये बहुत ज़रूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं के साथ साथ मैसेज यानी कि जो फोन कॉल आ रहे हैं उसके साथ साथ मैसेज भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लौटते हैं।

0: यार, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और हम जुड़ने जा रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, जहां से मैसेज किया है जोया जी ने, और ये कहती हैं कि हाउ गुड इज रबिंग क्लैरिफाइड बटर ऑन ह्यूमन स्किन इन एनी सीजन। डॉक्टर आशना जी,
1: तो क्लैरिफाइड बटर यानी घी, तो ये क्या करता है, हमारी स्किन में से वाटर लॉस यानी पानी की हानि कम करता है। तो एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह एक ऑक्लूसिव लेयर बनाता है। तो अगर कहीं पे त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर किसी को मुहासों की समस्या है या उस चीज़ से सेंसिटिविटी है या एलर्जी है, वो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। ध्यान रखने की बात ये है कि साफ शुद्ध घी इस्तेमाल करें, बिना किसी और चीज के, कि उसमें और कोई मसाले ना हो,
0: कोई मिक्स ना हो।
1: जी
0: जी। डॉक्टर अखिलेश जी, नवजात शिशु बड़े ही संवेदनशील होते हैं और उनकी त्वचा भी बड़ी ही नाजुक होती है, तो बरसात के मौसम में किस प्रकार उनका ख्याल रखना चाहिए?
2: जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि नवजात शिशु की त्वचा बहुत ही कोमल होती है। नवजात शिशु के पेशेंट्स में ज्यादातर हमने ये देखा है कि उनको अपने आप कोई बीमारी होने से ज्यादा जो हमने या पेरेंट्स ने उनके ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या जो उनको कपड़े यूज़ किए हैं, उसके वजह से एलर्जीज या दूसरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप कम से कम बच्चों को टच करें, सूती कपड़े पहने, जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट कपड़ा पहनाएं, बहुत ज़्यादा तेल मालिश ना करें। नहाने, अगर तेल मालिश करने का बहुत ही ज्यादा मन है तो नहाने के बाद बिना कपूर का कोई तेल, खासकर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। और बहुत ज्यादा उमस का मौसम है और अगर आपके घर में कूलर एसी की सुविधाएं नहीं है और पसीना बहुत आ रहा है तो तेल ना लगाए तो ये आपके लिए बेहतर होगा।
0: डॉक्टर, बरसात के मौसम में देखा जाता है कि जो जख्म होते हैं वो सूखते नहीं है, सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
2: सर, जैसे हमने बोला, पहले भी बात की कि डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है, वैसे अगर आपको नॉर्मली भी कोई जख्म सूखते हुए नहीं नजर आ रही है तो आपके घर में कोई अगर एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम रखी है तो उसको लगा ले और जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए। सर,
0: उसमें किसी प्रकार का पाउडर वगैरह भी लगा सकते हैं?
2: सर, पहले पाउडर बहुत लगाने का चलन था हमारे देश में, पर अब पाउडर का कोई खास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो पाउडर लगाने से बच्चे बार बार जख्म को छेड़े ना, उसको खुजली ना करे। खासकर जो लोग आयोडीन से धोते हैं या कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोते हैं, ये भी आप ना करें, उससे भी जलन एलर्जीज हो सकती है। एक सिंपल एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीसेप्टिक कोई क्रीम आप लगाकर आपके पास के डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई जनरल डॉक्टर से मिले।
0: जी डॉक्टर साहब, और एक और प्रश्न मेरे मन में ये चल रहा है कि डॉक्टर साहब, जब कभी हम लोग बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, घमौरियां हो जाती है, यानी कि बारिश के मौसम में देखा जाता है कि जैसे शुरुआत में भी हमने कहा था, डॉक्टर आशना जी से बात की थी तो कह रहे थे कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि बारिश के मौसम में अगर बारिश में भीग जाए तो घमौरिया कम हो जाती है, तो इसमें और कौन कौन सी समस्या हो सकती है, इसमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए?
2: सर, अगर घमौरियों का विषय अगर है, अगर घमौरिये की बात हो रही है, तो घमौरिया सिर्फ और सिर्फ ओवर स्वेटिंग से होती है और उसके ऊपर अगर हम कपड़े हवादार खुले कपड़े ना पहन रहे तो उससे होती है। घमौरिया होती है क्योंकि हमारे स्वेट ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, ओवरवर्क्ड हो जाते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी कम करने के लिए हमें ठंडे में रहना है, ठंडे एटमॉस्फेयर में रहना है और हो सके तो एसी कूलर फैन का आपको यूज करना है और कॉटन के कपड़े।
0: सब लगभग हमारे पास वक्त समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका, चलते चलते अपने श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए?

0: किस प्रकार के सावधानियां रखनी चाहिए?
1: इस मौसम में कोशिश करें मीठा चिकनाई कम खाएं, दाल हरी सब्जियां प्रोटीन ये सब थोड़ी ज्यादा मात्रा में खाएं, अच्छी क्वांटिटी फाइबर की खाएं और ज्यादा हैवी खाना ना खाएं।
0: जी डॉक्टर अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: सर, बारिश के मौसम में जो भी अधिकतर परेशानियां होती है वो ह्यूमिडिटी या नमी से होती है, तो ह्यूमिडिटी और नमी से बचने के लिए आप ठंडे वातावरण में ठंडे एटमॉस्फेयर में रहें, साफ सूती कपड़े पहने, एक दूसरे से अपने कपड़े शेयर ना करें। आपको अगर फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म या दांत की समस्या हो जाती है तो स्टीरॉइड युक्त क्रीमें ना लगाए और खुले हवादार कपड़े ठंडे मौसम ठंडे वातावरण में रहें।
0: तो दोस्तों, बारिश का मौसम बड़ा खुशनुमा जरूर होता है, लेकिन त्वचा की सेहत के लिए थोड़ी अतिरिक्त यानी कि सावधानी भी जरूरी होती है। स्वच्छता, त्वचा को सूखा रखने की आदत और समय पर डॉक्टर की सलाह, इन सब बातों का ख्याल रख करके अपना करके मानसून में होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं, त्वचा संबंधी परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अखिलेश जी और डॉक्टर आशना मल्होत्रा जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और त्वचा के संक्रमण संबंधी कई बातें आपने हमसे साझा की, जानकारियां दी और श्रोताओं के आपने सवाल ही बहुत अच्छे तरीके से दिए और अपने श्रोता, मुझे लगता है कि अपने श्रोता जरूर संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। आप दोनों का यहां पर अपना वक्त निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।
2: थैंक यू।
0: तो श्रोता मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और कल एक फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे, नए एक्सपर्ट के साथ हम फिर आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित होने के बाद कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज छात्रों का विधानसभा मार्च। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरकारी खरीद का कारोबार एक दशक में 422 करोड़ से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके आवास और विचरण का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की और खेलों में ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: 106.6 आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा जेन। और आज अल्फा जेन में, यानी कि खास सोमवार के दिन, बात होती है युवाओं की। जी हां, यूथ स्पीक्स लेकर आते हैं हम, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं एक खास मेहमान, जो बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की और रखते हैं आपके बारे में अपने विचार, और साथ ही साथ बात होती है आपसे जुड़ी हुई। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य कुमार पांडे। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। आदित्य डीयू से पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी के साथ आज वो बात करने वाले हैं खुद से मुलाकात की। तो आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना।
1: धन्यवाद मैम। सबसे पहले मुझे FM रेनबो पर आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल जब मैंने अपने आसपास देखा, कॉलेज के दोस्तों को, सीनियर्स को, और यहाँ तक कि खुद को भी, तो एक चीज़ बार बार नजर आई कि हम सब कुछ मैनेज तो कर रहे हैं, अपने क्लासेस, असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, सोशल लाइफ और भी बहुत कुछ, पर शायद इस पूरी भागदौड़ में एक चीज़ सबसे पीछे छूट जाती है, वह है खुद के लिए वक्त निकालना। हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, फिर भी सबसे ज़्यादा अकेली महसूस करती है, इसलिए मुझे लगा इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए।
0: बिल्कुल आदित्य, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन उस भीड़ में भी तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा होता है युवाओं के साथ या फिर किसी के भी साथ, और कैसे इस चीज को डील किया जाए, इस पर होगी बात आज के अल्फा जैन में।

दोस्तों वैसे एक बात बताइए, अगर आज के दिन को कोई टाइटल देना हो तो उसको क्या रखेंगे? बहुत ज्यादा भागदौड़ या कल के जैसा बीता हुआ एक और दिन? हम रोज इतना कुछ जीते हैं पर उसे महसूस करने का टाइम कितनी बार निकालते हैं, ये सोचने वाली बात है ना। तो जैसा अभी बताया गया, आज की ये मुलाकात है खुद से मुलाकात। ये ना कोई लेक्चर है ना कोई लंबा भाषण, बस एक हल्की सी बातचीत है आपकी, मेरी और उस इंसान की जिससे हम सबसे कम बातें करते हैं। तो जहां भी हैं, स्वागत है आपका अल्फाजन में।

ना कहीं निकल जाने की। वैसे एक बात बताइए, आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या देखा था? फोन की स्क्रीन या खिड़की से आती धूप? ज्यादातर लोगों का जवाब पहला ही होगा, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। बस इतना सोचिए, दुनिया भर की खबर तो हम रोज देख ही लेते हैं, अपना मूड कब चेक करते हैं? अगला गाना उसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत।

0: दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खुद से रूबरू होने की। सच कहूँ तो यही सबसे मुश्किल काम है आजकल। स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी इतनी चमकदार दिखने लगी है कि अपनी जिंदगी थोड़ी फीकी लगने लगती है। किसी की नई नौकरी, किसी का ट्रिप, किसी का परफेक्ट पल। पर एक बात याद रखिए, कोई अपनी बुरी तस्वीर नहीं दिखाता, कोई अपने बुरे पल को शेयर नहीं करता। तो कंपेयर करना ही है तो अपने पास्ट को खुद से कीजिए, आज वाले किसी और से नहीं।
6: बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य, हमें अपने पास्ट से यानी कि अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करना है कि हमारे कल में हम कैसे थे। हमें उससे तरक्की करनी है, उससे आगे बढ़ना है, ना कि किसी और से अपने आप को कंपेयर करके परेशान होना है कि उसके पास ये सब कुछ है या उसने ये अचीव कर लिया। और जब हम ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम तरक्की की राह पर अपने आप को बढ़ते हुए पाएंगे।

0: तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न वो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बिल्कुल दोस्तों, ये जोशीला गाना सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जोश आपके अंदर भी भर गया होगा। और जब जोश की बात आती है तो कुछ ही दिनों में हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जब बात तिरंगे की होती है ना तो मन में गर्व की भावना जागती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे सलाम करने तक सीमित है? दोस्तों, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि तिरंगे को केवल सोशल मीडिया की डीपी या किसी खास दिन की तस्वीर तक सीमित न रखें, बल्कि उसके सम्मान को अपनी आदतों और व्यवहार का हिस्सा बनाएं। राष्ट्रीय पर्वों पर हाथ में तिरंगा लेना जितना गर्व की बात है ना दोस्तों, उतना ही जरूरी है कि समारोह के बाद उसे सड़क पर या कूड़े में ना छोड़ें। और शायद तिरंगे के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि जब हम अपने देश के लिए अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, समाज के प्रति जिम्मेदारी हो या देश की प्रगति में अपना योगदान देने की बात हो। क्योंकि तिरंगे का सम्मान सिर्फ हाथ में झंडा उठाने से नहीं होता, बल्कि अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से देश का मान बढ़ाने से होता है।

खुद से मुलाकात की। दोस्तों अब करते हैं एक एक्टिविटी। आपको बस ये सोचना है कि आज ऐसी कौन सी बात हुई जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। सोचिए सोचिए, जरूर आपके दिमाग में पूरा दिन घूम रहा होगा कि कब आप किसको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्यों थैंक यू कहना चाहते हैं। आपको मुझे जवाब नहीं बताना है, मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन ये सवाल आपने अपने आप से किया, जवाब भी आपको पता लगा, तो कहीं ना कहीं आप ये तो सोचिए कि आप थैंकफुल हैं किसी के प्रति, यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए। और क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? क्या ये पॉजिटिविटी नहीं लेकर आता आपके जीवन में? इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको थैंक यू बोलने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड शो करें।

दोस्तों, आजकल जब कोई पूछता है कैसे हो, तो सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? बस यार, बहुत बिजी हूँ, आई एम फाइन। और पता है, ये जवाब तब प्रॉब्लम बनने लगता है जब बिजी होना हमारी पहचान ही बन जाए। गालिब की कुछ पंक्तियाँ हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उन्होंने ये पंक्तियाँ आज की भागती हुई जिंदगी के लिए नहीं लिखी थी, पर कितनी सटीक बैठती है ना, है ना?

दोस्तों, जिंदगी के सफर में हमारी विशेष कभी खत्म नहीं होती। बेटर करियर, बेटर पैकेज, बेटर लाइफस्टाइल, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर अगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हंसना ही भूल जाएं, तो सफर थोड़ा महंगा नहीं पड़ गया? चलिए एक सवाल छोड़े जाता हूं। अगर अभी आपको सिर्फ 5 मिनट मिले, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो क्या आप अपने साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे?

0: दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा, कोई बड़ा मौका आएगा, पर जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती। निदा फाजले का एक लाइन है, सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर चलते रहना सबसे जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए, 10 साल बाद वाला आप अगर आज वाले खुद से मिलने आए तो वो क्या पूछेगा कि कितना पैकेज है तुम्हारा, क्या तुम सक्सेसफुल हो या नहीं। शायद वो सिर्फ इतना पूछेगा कि खुश हो, और उस सवाल का जवाब सीवी में या फिर रेज्यूमे में नहीं मिलेगा, दिल में मिलेगा।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: छोड़ता, वो होता है खुद से हमारा रिश्ता। हम दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, पर एक छोटी सी गलती अपनी कभी माफ़ नहीं करते। ऐसा क्यों?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। कई बार होता क्या है ना कि जब हम अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पाते तो वो तकलीफ हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है और कहीं ना कहीं वो एक जख्म की तरह होती है और जिसे हम बार बार कुरेदते रहते हैं। इसीलिए जरूरी ये नहीं है कि एग्जाम अच्छा गया या नहीं, इंटरव्यू क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि जब ऐसा होता है हम सोचने लगते हैं कि क्या मैं काबिल हूँ। आपको अपनी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना है, क्योंकि कहानी हर बार बहुत सिंपल ही होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्योंकि कोई भी फेलियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, वो बस एक चैप्टर होता है, पूरी कहानी नहीं। एक चैप्टर अगर अधूरा रह गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत करिए, दोबारा कोशिश करिए, क्योंकि यही तो जीवन का सार है कि भले ही गिर जाए लेकिन उठना है और आगे बढ़ते रहना है, और आगे बढ़ते रहना नहीं छोड़ना है, हमेशा मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश ज़रूर साकार होगी और आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, अपनी मंजिल को पाएंगे और सफल होंगे।

दोस्तों, आपको हर मैदान को फतेह करना है, लेकिन उसका कोई लोड नहीं लेना है, क्योंकि हमें हमारा कर्म करना है। बाकी हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलेगा ही, और कभी न कभी सफलता हमें जरूर मिलेगी। और इसी नोट के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी आपको कहूंगी बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंक कार बही से संबंधित साक्ष्यों के लिए एक कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक कार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए,

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্যদেশপুৰ খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित

0: আক্ৰমণত 11 জন অসমীয়া লোক গুলীবিদ্ধ। সন্ধিয়াৰ আঁচলি বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और herghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill in the upper house. Replying to the discussion, Ms. Sitharaman said, "The objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities." She clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. She assured that small merchants and consumers will not have to pay merchant discount rate charges on UPI. The Parliament has also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Replying to discussion on the bill, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that this bill is a very reformative step which will help the country move forward at a faster pace.
5: The bill, among various other things that it wants to do, provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital and electronic signatures. It also therefore strengthens the statutory protection.
4: Later, the upper house was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The bill was passed without any discussion amid uproar by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET matter. As the pandemonium continued, the chair adjourned the house for the day. Besides, three other bills were also introduced in the Lok Sabha. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the house and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla was speaking during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. The student agitation in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations continued on the 17th consecutive day today. Police used water cannons as protesting students marched towards the state assembly in Ranchi. The protesters are demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into the alleged irregularities. The government claims that most of the students' demands have been accepted, but the protesters remain firm on their key demands. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi congratulated athletes for bringing glory to the nation and expresses confidence in their future victories. The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarter-final stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
6: বাতৰিৰ সৈতে মই সঞ্জীৱনী পাঠক। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, লোকসভাত আজি ন্যায়াধীকৰণ সংস্কাৰ বিধেয়ক 2026 গৃহীত হয়। হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানে দেশৰ সমূহীয়া শক্তি, নাগৰিকৰ একতা আৰু বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। শেহতীয়া ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি থকা বিষয়সমূহ সংসদত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলি কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে আজি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু অসমৰ শেহতীয়া বানত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত কালিৰ পৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ জৰীপ কৰা হৈছে। লোকসভাত আজি ন্যায়াধীকৰণ সংস্কাৰ বিধেয়ক 2026 গৃহীত হয়। দুপৰীয়া 2 বজাত সদন পুনৰ মিলিত হোৱাৰ পাছত বিৰোধী হুলস্থুলৰ মাজতে আইন আৰু ন্যায় দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে ন্যায়াধীকৰণ সংস্কাৰ বিধেয়ক 2026 উত্থাপন কৰে। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে ন্যায়াধীকৰণৰ প্ৰশাসনীয় কাম কাজ শক্তিশালী কৰাৰ উপৰিও ন্যায়াধীকৰণৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা আৰু সামঞ্জস্য বৰ্তাই ৰখাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়াধীকৰণ আয়োগ গঠনৰো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। শ্ৰীমেঘৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন খণ্ডত প্ৰৱৰ্তন কৰা সংস্কাৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে ন্যায়াধীকৰণৰ উদ্দেশ্য আদালতত স্থান দখল কৰাই নহয় বৰঞ্চ আধুনিক শাসন ব্যৱস্থাত পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰা। এই বিধেয়কে আধুনিক স্বতন্ত্ৰ আৰু সম ন্যায়াধীকৰণ পৰিৱেশতন্ত্ৰ স্থাপন কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থা, নিযুক্তি, প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতা শক্তিশালী কৰা।
7: I want to move or leave to introduce a bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualification, appointment, term and conditions of service of chairperson and members of various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendments in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto.
6: বিৰোধী হুলস্থুলৰ মাজতে ন্যায়াধীকৰণ সংস্কাৰ বিধেয়ক 2026 আলোচনা নোহোৱাকৈ গৃহীত হয়। সেই সময়ত সদন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া জগদম্বিকা পালে প্ৰতিবাদকাৰী সদস্যসকলক নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰে। তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ দেশে লোকসভাৰ কাম কাজ নিৰীক্ষণ কৰি আছে, সদন আলোচনাৰ বাবেহে। কিন্তু আৰম্ভণিৰে পৰা বিৰোধী সদস্যসকলে সদনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি লৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত বিষয় সন্দৰ্ভত বিবৃতি দিবলৈ সাজু হৈছে। বিৰোধীৰ হুলস্থুল অব্যাহত থকাৰ মাজতে অধ্যক্ষই কাইলৈ পুৱা 11 বজালৈ সদন স্থগিত ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে দিনৰ 12 বজাত কয়লা আৰু খনি মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে সদনত খনি আৰু খনিজ উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী বিধেয়ক 2026 উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে 1957 চনৰ খনি আৰু খনিজক উন্নয়ন আৰু নিয়ামক আইনৰ সংশোধনী বিচৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কেৰালা নাম পৰিৱৰ্তন বিধেয়ক 2026 উত্থাপন কৰে। এই বিধেয়কৰ উদ্দেশ্য হৈছে কেৰালাৰ নাম সলনি কৰা। আনহাতে সমবায় দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী মুৰলীধৰ মহলে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম সংশোধনী বিধেয়ক 2026 উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে 1962 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম আইনৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে সদন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া সন্ধ্যা ৰায়ে প্ৰতিবাদকাৰী বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলক নিজৰ আসনলৈ গৈ সদনৰ কাম সুকলমে পৰিচালনাত সহায় কৰিবলৈ আহান জনায়। বিৰোধী সদস্যসকলে নীটৰ বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিবৃতি বিচাৰি হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি অব্যাহত ৰখাত সদনৰ কাম কাজ দিনৰ 2 বজালৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে দিনৰ 11 বজাত লোকসভা মিলিত হোৱাৰ সময়ত সদন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া এন কে প্ৰেমচন্দ্ৰনে প্ৰশ্নকাল আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা চলায় যদিও বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে। বিৰোধী সদস্যসকলে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা বিবৃতিৰ দাবী জনায়। ইয়াৰ পাছতো হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ বাহাল থকাত শ্ৰীপ্ৰেমচন্দ্ৰনে দুপৰীয়া 12 বজালৈ সদন স্থগিত ঘোষণা কৰিছে।

0: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदो, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 दाखिल लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी,

0: India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure, leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
1: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
2: इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफटॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है. लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हों अथवा पंप स्टोरेज के हों, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है. अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सकें, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है. वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है. उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं. धन्यवाद. स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है. और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया. डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है. डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे. और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है. इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टाइप को भी

0: का प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंफर्म है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था। इसको समझौते के तहत किया जाता था लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है। लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संचालन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवाद ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरंग सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो के पंजाब के आंकड़ों से

0: बना हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूति पर सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी। तो पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion.
0: Honorable Minister, Subhapam Chimodai, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो मैंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो एक सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहाँ की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहाँ कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहाँ इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहाँ कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसको उत्तर दे रहे
1: हैं। सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगा

0: धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को, जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास सफाई रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ অনুষ্ঠানটি। আজি শাস্ত্ৰীয় সংগীতত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব বেলা চৌধুৰীৰ খয়াল ৰাগ ইয়ামান।

तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: വന്ദേ മാതരം.
1: വന്ദേ മാതരം സുജല.